बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

नवरात्रि के पांचवें दिन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज पंचमी है, हवाओं में डांडिया और गरबे की खनक है और इसी उत्सव के रंग को घोलने के लिए हमने बजाया आपके लिए यह जोशीला नगमा। तो दोस्तों आज मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति लेकर कार्यक्रम नॉट स्टॉप गपशप सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। दोस्तों वैसे त्योहार सिर्फ नाचने गाने का नाम नहीं होता, त्योहार नाम होता है अपने भीतर एक नई ऊर्जा एक नए विश्वास को जगाने का। और आज है 15 अक्टूबर का दिन तो इस ऊर्जा को दो गुना कर देते हैं क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि आस्था और मेहनत जब मिल जाए तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं रहता। जी हाँ आज जयंती है भारत के उस मिसाइल मैन की जिन्होंने सिखाया है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले तपना सीखो। जी मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे, सपने तो वो है जो सोने ना दे। तो दोस्तों माँ के आशीर्वाद और आज के इस पावन दिन के साथ मैं पूछती हूँ आज का, जी हाँ आपसे हमारा आज का सवाल, आपका ऐसा कौन सा सपना या फिर लक्ष्य है जिसके लिए आप हर रोज सुबह उठते हैं और जो आपको कभी थकने नहीं देता। तो दोस्तों मैं सवाल फिर से एक बार दोहरा दूं कि आपका ऐसा कौन सा सपना या फिर लक्ष्य है जिसके लिए आप हर रोज सुबह उठते हैं और जो आपको कभी थकने नहीं देता। तो दोस्तों और आप अपने जवाब मुझसे

शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, नंबर है 2213-1341, नंबर यानी कि 2213-1341। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप इस नंबर में डायल करके अपनी इस सवाल का जवाब हमारे साथ शेयर करें, तो चलिए दोस्तों इस सफर को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। क्योंकि अब जो मैं ये सुनाने वाली हूँ, ये सपनों की उस उड़ान को देती है उम्मीदों के पंख। जी हाँ, सुनिए फिल्म इकबाल का ये बेहद खूबसूरत नगमा।

0: तो चलिए दोस्तों हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार,
1: मैं शोभी शाका बोल रहा हूँ कलकत्ता से।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: दुर्गा पूजा का लिए शुभेच्छा।
0: जी आपको भी।
1: थैंक यू दीदी। देखिए दीदी, आपने जो टॉपिक दिया है वास्तववादी,

0: मेनी मेनी थैंक्स। अब जब भी आता है देखता हूँ मैं, एकदम वास्तववादी हार्ट टचिंग टॉपिक देता है।
1: थैंक यू सो मच।
0: पहले तो मैं एपीजे अब्दुल कलाम को मैंने श्रद्धांजलि में देना चाहता हूँ। देखिए जो उसका जो जो बानी जो है उसके तरीके से आपने एक टॉपिक दिया है। देखिए मुझको जो सुने नहीं देता है वो माटी जो शक्त आकार नहीं, हम लोग को जो बांग्ला में जो बोलता है ना पायर नीचे जो माटी शक्त करा, वही जिनिसटा मैंने हमको वो सुने नहीं देता, क्योंकि हम लोग जो चाहता है एक सेफ मानी, भविष्य के लिए एक सेफ मानी हम लोग को एक चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई इमरजेंसी में हम लोग को लगेगा ही चिकित्सा। हाँ चिकित्सा के लिए बोलिए, कोई कोई दुर्घटना के लिए बोले भाई, कोई जिनिस के लिए हम लोग को फिक्स मानी हम लोग को चाहिए। इसलिए हम लोग देखिए काम जाता है, कोई जॉब में जाता है, देखिए गर्मी में बोलिए, वर्षाकाल में बोलिए, जब भी बोलिए ना, हम लोग दौड़ दौड़ करता है, भीड़ बस में जाता है, उसके लिए हम लोग काम कम करता है, इसलिए हम लोग का इतना खाटना खाटी करता है। देखिए हम लोग का सेफ मानी, स्पेसिफिक मानी हम लोग को सेफ चाहता है, जो सेव करने लगते, इसलिए हम लोग को सोने नहीं देता है जी। हाँ कब वो सेफ मानी एक ठीक ठाक होगा, एक पूंजी ठीक ठाक होगा, तब मैं सोऊंगा। इसलिए हम लोग को बहुत ब्रेन में बार बार चलता है जी, हाँ ठीक ठाक हो गया ना, ये मानी ठीक ठाक सेफ है ना। देखिए बार बार हम लोग को दिमाग चलता है, इसलिए हम लोग सोने नहीं देता है दीदी।
1: थैंक यू सो मच शौभिक जी, इतनी अच्छी बात है हमारे साथ साझा करने के लिए। और आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि ज्यादातर मनुष्य यही सोचते हैं कि इमरजेंसी फंड जिसे कह सकते हैं कि वो रेडी रहे।
0: एकदम दीदी
1: जी, थैंक यू सो मच शौभिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू,
0: थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू।
1: तो दोस्तों आज का दिन पूरी दुनिया में विश्व छात्र दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है, क्योंकि कलाम साहब उम्र के आखिरी पड़ाव तक खुद को सिर्फ एक सीखने वाला विद्यार्थी ही मानते रहे। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि सपना दुनिया फतह करने का ही हो, वो एक छोटी सी नौकरी का हो सकता है, परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाने का हो सकता है, या फिर अपनी पहचान बनाने का हो सकता है। अपने उस सपने को आज मेरे साथ साझा कीजिए। बिल्कुल, नंबर तो मैं आप सभी को बता ही चुकी हूँ, फिर से एक बार बोल दूं, 2213-1341, यानी कि 2213-1341। तो दोस्तों जब तक आप कर रहे हैं इस नंबर पे डायल, तो चलिए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

0: तो दोस्तों हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, तो ये सुनते हैं कि उनका क्या सपना या लक्ष्य है जो उन्हें सोने नहीं देता। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग जी।
0: गुड मॉर्निंग,
1: मैं मोनिरुद्दीन बोल रहा हूँ, दूसरी छात्राई और
0: जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: सबसे पहले आपको सभी पंचमी का शुभकामना देना चाहता हूँ
0: जी, आपको भी,
1: और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना अच्छा अच्छा गाना बजाने के लिए, हमारे मन का बात मौका देने के लिए
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं सबसे पहले खुदा से ही मांगता हूँ, मेरे इतना दिमाग दे, इतना नॉलेज दे, जिस शिक्षा दे, जिसके जरिए मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं दूसरे के लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि दुनिया में एक ऐसी चीज है जो शिक्षा जो देने से बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। और ये शिक्षा ऐसी चीज है जिसके लिए मैं जिससे के क्या खराब हो क्या भला हो मैं सोच सके, जिससे के लिए क्या हानिकारक है कि मैं सोच सके, इसलिए दुनिया और भी खूबसूरत हो जाते हैं और हमारे जीवन भी खूबसूरत करने के लिए शिक्षा जरूरत है, क्योंकि शिक्षा के जरिए मैं स्टेबलिश हो सकता हूँ, मेरा परिवार स्टेबलिश हो सकता हूँ, मेरा आस पास जो समाज है तो समाज के मैं खूबसूरत बना सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा प्रोग्राम डाले के जल्द से जल्द आए, हमारे दिल खुश करे, इसी मैं चाहता हूँ।
0: और मैं भी आपकी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इतनी अच्छी सोच हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू,
1: थैंक यू, थैंक यू, वेरी मच, ओके बाय,
0: थैंक यू। दोस्तों हम सब जब किसी सपने की उंगली पकड़कर निकलते हैं तो रास्ता हमेशा फूलों से भरा नहीं मिलता, कई बार ठोकरें लगती है और कई बार थकान घेर लेती है और मन करता है कि बस यहीं ठहर जाए। तो दोस्तों तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं, क्योंकि अगर आज आपकी जिंदगी में की राह में भी कोई मोड़ मुश्किल लग रहा है और कोई इम्तिहान भारी पड़ रहा है तो बस एक गहरी सांस लीजिए, ये मुश्किलें आपको हराने नहीं आपको तराशने आई है। तो चलिए दोस्तों ये फलसफा सुनते हैं अपने हौसले को फिर से जगाने के लिए।

0: तो दोस्तों इस गीत को सुनते हुए मुझे डॉक्टर कलाम के बारे में एक बात याद आ रही है कि जब वो अपने पहले बड़े सैटेलाइट लॉन्च पर काम कर रहे थे तो पहला मिशन समंदर में गिरकर क्रैश हो गया था और पूरी दुनिया के सामने नाकामी का वो दिन कितना भारी रहा होगा। लेकिन कलाम साहब ने रुकना नहीं सीखा, वे दोबारा जुटे और ठीक एक साल बाद उसी आसमान में तिरंगा लहरा दिया। वो हमेशा कहते थे, फेल का मतलब अंत नहीं होता, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी सीखने की पहली कोशिश। तो दोस्तों हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, ये सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार ज्योति जी।
0: नमस्कार
1: जी। सबसे पहले मैं तमाम सुनने वालों को और आपको भी पूजा की पावन पूजा पर पंचमी की शुभकामनाएं मैं तमाम लोगों को देना चाह रहा हूँ।
0: जी मैं भी आपको आकाशवाणी के परिवार और अपने समस्त श्रोताओं की ओर से आपको पंचमी की शुभकामनाएं।
1: जी और मैं जो टॉपिक आपकी लेकर के आए हैं बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा गाना भी सुना रहे, इसके लिए मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ फिर से।
0: जी धन्यवाद।
1: जी और मैं कहना यही चाहता हूँ कि ये सपने हर इंसान की जिंदगी में होती है, हर इंसान की कोशिश होती है और हर इंसान का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है। और अभी आपने रेफरेंस दिया हमारे देश के महान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब का, जिनका जीवन का कार्यकाल जो है ये हमें प्रेरणा देता है, हमें सिखाता है कि अगर हमारा कोई भी लक्ष्य हो, चाहे वो कितना ही बड़ा लक्ष्य क्यों न हो, अगर हम कोशिश करते रहें, हारे नहीं, वो लक्ष्य को हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं, जरूर हम पा सकते हैं, मंजिल तक जरूर पहुंच पाएंगे।
0: बिल्कुल
1: जी। तो हर इंसान के जीवन में सपना होता है, लेकिन मेरा जो सपना है जो मेरा सपना ये नहीं है कि

मैं बहुत सारे रुपया कमाऊं, बहुत सारे अपनी जरूरियात के सामान को पूरी करूं, या मैं बहुत ही ऐश के साथ या फिर सुकून के साथ जिंदगी जीऊं। रियलिटी बता रहा हूं अपनी जिंदगी की। मेरा सपना बस यही है शुरू से, क्योंकि मैं सामाजिक कार्य में ज्यादा रहता हूं। मेरी सोच ये रहती है कि हम क्यों ना एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सम्मान करें,

0: तो हम समझते हैं कि ये सुंदर सा हिंदुस्तान जिसे हम सोने की चिड़िया कहते हैं उससे भी ज्यादा सुहाना देखने में लगेगा, उससे भी ज्यादा खूबसूरत बन जाएगा। मैं अपनी तरफ से तमाम सुनने वालों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप एक दूसरे को सम्मान की नजर से देखिए, एक दूसरे को किसी को भी आप एजुकेशन की नजर से या फिर नीच नजर से नहीं, एक समान है। हम ये हमारे भारत के संविधान ने दिया है हमको कि हम सब एक समान है, चाहे वो देश का कितना ही बड़ा आदमी हो कितना ही छोटा आदमी हो, हम तमाम लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे के पर्व का सम्मान करें और एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति होगी, ये सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने का सबसे बड़ा रास्ता होगा अगर हम इस तरह का ये सोच ले और हम सब लोग ये चाह ले।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच हमारे साथ साझा करने के लिए
0: जी शुक्रिया जो
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: जी शुक्रिया।
1: तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 10:34 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप। तो दोस्तों बातों और गीतों का सिलसिला यूं ही चलने वाला है ठीक सुबह के 11 बजे तक। तो दोस्तों यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए अपनी दोस्त ज्योति के साथ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: एक आवश्यक सूचना। 149वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 19/11/2026 को अपहरण 1 बजे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR Avenue कोलकाता 700012 में गूगल मीट के माध्यम से 149वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों और डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन संबंधी दावों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC दास, सहायक निर्देशक डाक सेवा, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR Avenue कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और यह डाक या ईमेल आईडी cpmg-wb@indiapostpost.gov.in के माध्यम से या फिर adpgcowb@gmail.com या फिर pg.wb@indiapostpost.gov.in के माध्यम से दिनांक 26/10/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे दिए गए निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निर्देशक डाक सेवा से दूरभाष संख्या 0332212050 अथवा 0332212062 या फिर 0332212050 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त। तो दोस्तों, सपनों के सफर में एक सबसे बड़ी रुकावट अक्सर रास्ते के गड्ढे नहीं होते, बल्कि वो 4 लोग होते हैं जो हर मोड़ पर खड़े होकर कहते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो ये सब। हम में से कितने लोग सिर्फ इसी डर से अपने सपनों का गला घोंट देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन कलाम साहब हमेशा कहते थे कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, क्योंकि जब आप कुछ नया और बड़ा करने निकलेंगे तो दुनिया पहले हंसेगी, फिर रोकेगी और अंत में वही लोग आपकी कामयाबी पर ताली बजाएंगे। तो दोस्तों, अगर आज आप भी किसी के ताने या किसी की बातों से दिल छोटा करके बैठे हैं तो लोगों की परवाह छोड़िए और आनंद बख्शी साहब के लिखे इस अमर फलसफे को अपनी ढाल बना लीजिए। फिल्म अमर प्रेम से किशोरदा की जादुई आवाज में ये गीत आप सभी के लिए।

बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

आते जाते रास्ते में मीठी यादें छोड़ जाते हैं। कितनी गहरी बात कह के आनंद बख्श साहब, मुसाफिर तो हम सब हैं, लेकिन वो यादें मीठी तभी बनती है जब हम अपने इस छोटे से सफर में किसी के काम आ सके, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके और अपने सपनों के जरिए इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना सके। डॉक्टर कलाम ने भी तो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक यही किया। तो दोस्तों, जिंदगी लंबी हो या छोटी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि उस सफर में आपने जिया कितना और दिया कितना। तो चलिए दोस्तों, इस मुसाफिर खाने में उम्मीदों का दिया जलाए रखते हैं और बढ़ते ही सफर से अगले पड़ाव की ओर। जी हाँ, क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि आज का ये सुहाना सफर अब यहीं समेटना होगा। तो दोस्तों, आज हमने डॉक्टर कलाम की यादों और आपकी खूबसूरत सपनों के साथ ये जो पल है, पलक झपकते ही बीत गया। बस चलते चलते यही कहूंगी कि जिंदगी के सफर में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अपने सपनों को कभी सोने मत दीजिएगा कभी, क्योंकि ख्वाब वही मुकम्मल होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन पर्व की मिठास आपके जीवन में बनी रहे। अब आपकी दोस्त यानी कि मैं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति अब आप सभी से लूंगी इजाजत और इस वादे के साथ कि फिर जल्दी मिलेंगे नए तराने और नई बातों के साथ। तो दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। और जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ।

0: ইনভেস্টর সচেতনতামূলক উদ্যোগ। আরো জানতে হলে সেবির ইনভেস্টর ওয়েবসাইট দেখুন, নয়তো সেবি সার্থী অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
1: PCP-NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ভাই একবার ভেবে দেখ, যদি কোনো কিছু 15-20 বছর ধরে রিসার্চ করা হয়, হাজার হাজার ঘন্টা টেস্টিং হয়, অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি ARAI, SIAM আর BIS এর মতো অর্গানাইজেশন ইভ্যালুয়েট করে, নীতি আয়োগ যার ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য পলিসি বানিয়েছে আর তারপর সেটা সারা দেশ জুড়ে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়ে থাকে,
4: তাহলে সেটা ট্রাস্টওয়ার্দি হতেই হবে।
5: একদম, E20 হলো সেরকমই একটা ফিউল, সায়েন্টিফিক্যালি রিসার্চড আর প্রুভেন সেফ, ভারত সরকারের তেল বিপণন কোম্পানিগুলির দ্বারা জনহিতার্থে প্রচারিত।
6: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर, रेनबो पर।
7: जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आजय रिंकू और आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम 3 का तड़का। दोस्तों, कोलकाता में दुर्गा पूजा का महाउत्सव पूरी भव्यता के साथ शुरू हो चुका है और आज महापंचमी यानी कि 15 अक्टूबर 2026 के दिन पूरा शहर रोशनी और उमंग से सराबोर है। हालांकि मुख्य पूजा महाषष्ठी से शुरू होगी, लेकिन कोलकाता का पूंजी फीवर यानी कि पूजो फीवर आज पंचमी से ही अपने चरम पर पहुंच गया है। लोग पंडालों के दर्शन के लिए सड़क पर उतर गए हैं। ये तो भीड़ और सच में एक वर्ष का ये जो इंतज़ार है वो दुर्गा पूजा के दिन दिखने को मिलता है। लोग खुशी से रास्तों पे चलते हैं पैदल पूरी मेहनत के साथ और बहुत खुश रहते हैं। तो दोस्तों, 3 बजकर का तड़का भी उसी तरह से आनंददायक होना चाहिए क्योंकि ये है पूजा का समय। तो चलिए सुनते हैं मीका सिंह और नक्काज अजीज की आवाज़ में ये गीत।

दोस्तों 139वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 19/11/2026 को अपराह्न 1 बजे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36CR Avenue कोलकाता 70012 में गूगल मीट या फिर वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 139वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों और डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन संबंधी दावों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यूरो का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC दास, सहायक निर्देशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्किल P36CR Avenue, कोलकाता 70012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या फिर ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या फिर adpgkaobi@gmail.com या फिर pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 26/10/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे दिए गए निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट या फिर वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निर्देशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050 या फिर 0332216120 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। विशेष उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

0: जी हाँ दोस्तों, आतिफ असलम की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म टाइगर जिंदा है से, और अभी प्रस्तुत है परियोजना प्रस्तुति।
1: 107 एफएम रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
0: दोस्तों, परियोजना प्रस्तुति में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विषय पे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं वंचित परिवारों की गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन प्रदान करना है, ताकि उन्हें लकड़ी, कोयले या गोबर के उपलों के पारंपरिक धुएं से मुक्ति मिल सके। इसकी विशेषता विवरण इस प्रकार है कि इसकी प्रारंभिक तिथि 1 मई 2016, वर्तमान में इसका तीसरा चरण PMUY 3.0 लागू है और नोडल मंत्रालय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लागू है। मुख्य लाभार्थी इसके ये हैं कि गरीबी रेखा के नीचे BPL और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। पूरी तरह से ये कनेक्शन निशुल्क है। इसे जमानत राशि, सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप और पहली रिफिल के साथ चूल्हा भी मुफ्त मिलता है। लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 300 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी सीधे बैंक खाते यानी कि DBT में मिलती है। अब तक देशभर में 10.3 करोड़ से अधिक परिवारों की इस योजना से जोड़ा जा चुका है। इस मापदंड के लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार है। ये केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदन करने वाले मुख्य रूप से भारत का स्थानीय निवासी होना चाहिए। परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए या SC ST अंत्योदय अन्य योजना AY या फिर अधिकांश पिछड़े वर्ग से संबंधित हो। आवेदक के संपर्क में परिवार में पहले से कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके लिए आधार कार्ड और या फिर राज्य सरकार द्वारा जारी BPL राशन कार्ड या परिवार संरचना का प्रमाण पत्र आवश्यक है। सब्सिडी राशि प्राप्त करने के लिए बैंक पासबुक आधार से लिंक होना चाहिए। आवेदक महिला का पासपोर्ट साइज फोटो भी आवश्यक है। लाभार्थी भारत सरकार के आधिकारिक रूप से इसे अपनी पसंदीदा गैस कंपनी में जाकर या फिर उज्ज्वला 2.0-3.0 कनेक्शन के लिए फॉर्म भर सकते हैं और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। अपने नज़दीकी LPG वितरक में जाकर आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे मोहन कानन की आवाज में फिल्म कटी बट्टी से ये गीत। गीत के बोल लिखे थे कुमार ने और संगीत से सजाया था शंकर एहसान लॉ ने। दोस्तों इसी के साथ अभी 3:29:23 हो चुके हैं और हम 3:30 में आपके लिए दिल से कार्यक्रम उमंग पेश करेंगे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उमंग।

0: लगता है।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं, उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग एनसीईआरटी का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा। टिम टिम तारा बोलो टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा, इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ सीआईटी एनसीईआरटी की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमथा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है, लिखते हैं, रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने। और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर टू लिसन टू द पोएम द क्रो इन म्यूजिकल मैनर टूडे। What a coincidence it is that I read this poem in my childhood in the textbook and got it listened to it in a musical form. I liked this poem and song very much. Thank you very much. आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना? जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है। लेकिन श्रोताओं, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चीज अलमारी भर की भारी भरकम फाइलों को चुटकी में निगल लेगी। आपको याद होगा 90 के दशक का वो दौर, जब कंप्यूटर क्लास या दफ्तरों में हम वो चौकोर पतली काली फ्लॉपी डिस्क लेकर घूमते थे, है ना? जरा सी धूल लगी या बैग में मुड़ी तो सारा काम खत्म। और फ्लॉपी की कुल क्षमता कितनी थी आपको पता है? महज 1.44 मेगाबाइट यानी MB। यानी आज के दौर में एक MP3 गाने का आधा हिस्सा भी उसमें ठीक से नहीं आ सकता। आज हमारे पास चलता फिरता डेटा बैंक है यानी पेन ड्राइव। पता है श्रोताओं, इसका आविष्कार हुआ था एक आविष्कारक के भयंकर गुस्से और शर्मिंदगी के कारण। किस्सा है साल 1998 का। इसराइल के एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, नाम था डोब मोरान। उनकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी। वे कंपनी को बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबरा कर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर आ गया डिस्क करप्टेड। श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा, मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक आई एम सॉरी बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई और मोरान को उस कमरे से सिर झुकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन

चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो। बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी, यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन यह हुआ कैसे? श्रोताओ, इसके लिए आपको थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए, उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थीं। पहली थी यूएसबी पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे, और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और यूएसबी कनेक्टर को अंगूठे जितने छोटे खोल में फिट कर दिया, ना किसी तार की जरूरत, ना किसी बैटरी की, और उन्होंने उसे कंप्यूटर पर लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, कंप्यूटर का कुछ डेटा वहां ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने उसका नाम रखा डिस्क ऑन की, यानी चाबी के छल्ले में लगने वाली डिस्क। आपको पता है श्रोताओ, उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी? अंदाजा लगाइए। शायद आप सोचते होंगे 1 GB या 2 GB, आपके अलग अलग अनुमान होंगे, लेकिन श्रोताओ आपको बताना चाहता हूं, उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8 MB, यानी 8 MB। आज तो 8 MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं, उस वक्त ये 8 MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब यह तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में CD और DVD के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल हो गया है श्रोताओ, 8 MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है, यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओ, अगर 1998 की उस शाम डॉब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती, तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक CD के जंजाल में ही उलझे होते। जी हां श्रोताओ, यही तो है विज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है, तो शुरू होता है नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं, तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओ, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।

0: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। एक किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा,
1: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
0: मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
2: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।
0: फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब्बा आए। दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो 7 की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
1: क्या आप में से किसी ने एक आम खाया है?
0: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
2: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
0: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
2: नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया।
0: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
3: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे। अगर आप में से किसी ने एक आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थीं। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।
0: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
2: नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था।
0: ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,
4: अरे वाह, मेरे मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया।
5: तो बच्चों, आपने सुनी ये कहानी, अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, बीज, पत्ती, फूल और फल, इनके आने की सही तरतीब क्या है? आपने कौन कौन से आम खाए हैं, उनके नाम लिखिए। इन सवालों के जवाब आप अपने वालिदैन, दोस्त और अहबाब से भी चर्चा कर सकते हैं।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम आम की गुठली, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। इस कार्यक्रम में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहादुरी से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने वाले और अपना प्राण न्योछावर करने वाले वीर किशोर जोरावर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
7: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
8: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
9: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
10: बिल्कुल
11: ठीक है।
9: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सके।
12: वीर जोरावर की
13: जय।
12: वीर जोरावर की
13: जय।
12: जय जयरापुर, जय भारत।
13: जय जयरापुर, जय भारत।
8: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जयरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
0: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
8: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
0: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
14: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
9: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
14: जी।
9: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
14: जी महाराज। महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
9: बिल्कुल,
14: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
9: जी मंत्री जी।
14: जी महाराज।
8: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
15: होशियार, खबरदार, रियासते जयरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
16: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह।
17: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
9: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
17: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
9: देखिए निजाम साहब।
17: जी फरमाइए।
9: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
17: जी।
9: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
17: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
9: जी।
17: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।

0: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
1: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
2: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
0: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
3: बिल्कुल।
0: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
3: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
0: लेकिन जरा होशियारी से।
3: जो हुकुम सरकार।

0: এক ইনভেস্টর সচেতনতামূলক উদ্যোগ। আরো জানতে হলে সেবির ইনভেস্টর ওয়েবসাইট দেখুন, নয়তো সেবি সার্থী অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
1: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: শুনছো ক্যাফে কলকাতা,
3: ক্যাফে কলকাতা
2: 107 FM রেইনবোতে, ক্যাফে কলকাতা।

0: आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
0: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छाया लोग 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लोग।
0: नजारा फिल्मों का।
3: जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका 107 FM रेनबो पर और मैं हूँ आज रिंकू। दोस्तों, कोलकाता में दुर्गा पूजा का महाउत्सव पूरी भव्यता के साथ शुरू हो चुका है और आज पंचमी का जीवंत दृश्य पंडालों के पट खुल चुके हैं। कोलकाता का 3,300 से अधिक पंडालों में से अधिकांश के द्वार आज दर्शकों के लिए खोल दिए गए। इससे साल पहली बार ऐतिहासिक एलन पार्क पार्क स्ट्रीट में भी दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वैसे पंचमी का दिन उन परिवार, फोटोग्राफर, दर्शकों के लिए सबसे मुफीद माना जाता है जो सप्तमी या अष्टमी की भारी भीड़ और लंबी कतारों से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज शहर से शाम से ही सड़कों की फ्लाईओवर पर चमचमाती रंग बिरंगी लाइट्स चकमका रही है, लेकिन थोड़ी सी बारिश के कारण मामला थोड़ा गड़बड़ हुआ है। बट फिर से कोलकाता तो कोलकाता है, घूमने फिरने और सब तरह की एंजॉय के लिए प्रसिद्ध जॉय ऑफ बंगाल कोलकाता। आइए सुनते हैं, इसी के साथ पंचमी की शुरुआत करते हैं 107 FM रेनबो पर रिंकू के साथ। आइए छाया लोक में।

जी हाँ दोस्तों, श्रेया घोषाल के और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज से सजी ये बेहतरीन फिल्म हमारे जो पिक्चर के गीत है, हमारे सारे देवदास पिक्चर में शाहरुख खान या फिर कहे कि ऐश्वर्या राय या फिर कहे कि साथ में माधुरी दीक्षित का वो आगामी और वो डांस, दर्शकों को तो वैसे ही भीड़ और इस गीत के संगीत के साथ रूबरू करवाती है। वैसे अगर हम कोलकाता के बारे में बोले तो पंडालों के पट तो खुल चुके हैं। कोलकाता के 3,300 से अधिक पंडालों में से अधिकांश के द्वार आज दर्शकों के लिए खोल दिए गए हैं। इसमें सबसे पहली बार ऐतिहासिक एलन पार्क, पार्क स्ट्रीट में जो भी वो पार्क है, वो दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन उसमें किया जा रहा है। वैसे पंचमी का दिन उन परिवारों, फोटोग्राफरों और दर्शकों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है जो सप्तमी या अष्टमी की भारी भीड़ और लंबी कतारों से बचना चाहते हैं। दोस्तों आज हमारे कोलकाता का फिर से एक साल के बाद फिर से उस समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और साथ में दोबारा दुगनी खुशी के साथ फिर से घुसने और आने के लिए साथ में अपने साथ लिए चलने के लिए एक बेहतरीन रात भर का प्लान और खुशियों की

जी हाँ दोस्तों, कविता कृष्णमूर्ति और करसन संगराथी की आवाजों से गूंज उठा है ये पूरा माहौल। और जैसे कि ढाक की गूंज और माहौल, शहर की हवा में पूजो पूजो गंध हो, यानी कि पूजा की खुशबू की महसूस की जा सकती है। ढाकियों के ढोल की ढाक की आवाजें, शंख की ध्वनि और लेजर शो ने कोलकाता के आसमान को जीवंत कर दिया है। हाल ही में इंडियन गार्डन में स्टेडियम में 3000 ड्रोन और 3000 ढाकियों के साथ एक भव्य गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया, जिसमें इस बार के उत्सव की टोन का सेट भी कर दिया गया है। दोस्तों, कोलकाता के प्रमुख पंडाल और उनकी विशेषताएं इस बार कोलकाता में धूम मचा रही है। जैसे मचाएगी अभी श्रीराम और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म खिलाड़ी 4786 का ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, श्री राम और श्री श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म खिलाड़ी 786 से। वैसे दुर्गा पूजा 2026 का आगामी कार्यक्रम कोलकाता और बेलूर मठ यानी कि 15 अक्टूबर गुरुवार आज के दिन से महापंचमी पंडाल दर्शन उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 17 अक्टूबर शनिवार महाषष्ठी बोधन और आमंत्रण मुख्य पूजा प्रारंभ होगा और 18 अक्टूबर महासप्तमी यानी कि नव पत्रिका प्रवेश और पूजा होगी। 19 अक्टूबर महाअष्टमी कुमारी पूजा अंजलि और संधि पूजा होगी। 20 अक्टूबर मंगलवार महानवमी यानी कि नवमी हवन और महाआरती। 21 अक्टूबर विजयादशमी सिंदूर खेला और प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम है। वैसे दोस्तों, कोलकाता पुलिस और नगर नागरीय प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, ट्रैफिक डाइवर्जन और भीड़ नियंत्रण के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि लोग सुरक्षित तरीके से सिटी ऑफ जॉय के इस वैश्विक उत्सव का आनंद ले सके। वैसे दोस्तों, कार्यक्रम का उत्सव का आनंद लेने का समय तो ये भी खूब है क्योंकि 7:25 हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में और आप सुन रहे हैं आरजे रिंकू के साथ 107 एफएम रेनबो पे। आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल और वैशाली माड़े की आवाज में फिल्म बाजीराव मस्तानी से ये गीत।

जी दोस्तों, श्रेया घोषाल और वैशाली मारे की आवाज में फिल्म बाजीराव मस्तानी से सुन रहे थे आप ये गीत। वैसे गीत के बोल लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने और संगीत से सजाया था संजय लीला बंसाली ने। बस दोस्तों, दुर्गा पूजा का माहौल, पंचमी का आज का दिन, लोग खुशी से सारा बोर हो रहे हैं। लेकिन आज के लिए महत्वपूर्ण ट्रैफिक नियम पंचमी स्पेशल को मैं बताऊंगी। नो एंट्री टाइमिंग से शहर के अधिकांश मुख्य मार्गों पर दोपहर 3 बजे से लेकर तड़के 4 सुबह तक यात्री वाहनों, प्राइवेट कारों के प्रवेश पर पाबंदी या रूट डाइवर्जन लागू रहेगा। वैसे प्राइवेट और पार्किंग अलर्ट, पंडालों के 500 मीटर के दायरे में गाड़ियां पार्क करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। केवल अधिकृत कोलकाता पुलिस पार्किंग जोन का ही उपयोग किया जा सकता है। वैसे मेट्रो सेवा, कोलकाता मेट्रो आज रात 12 बजे सुबह तक विशेष ट्रेनें चला रही है, इसलिए निजी वाहनों की जगह मेट्रो का उपयोग आपके लिए समय बचाएगा। वैसे दोस्तों, दक्षिण कोलकाता टिप्स, जो कि आज पंचमी है, इसलिए दक्षिण कोलकाता की चौड़ी सड़कों पर शाम 4 बजे के बाद ही भारी भीड़ उमड़ पड़ेगी। यहां पंडालों के बीच की दूरी तय करने के लिए ऑटो या फिर पैदल चलना सबसे सही रहेगा। आइए सुनते हैं इसी बात पर कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना।

जी हाँ दोस्तों, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में सुनी ये गीत, हमेशा की तरह फिर से उसी अंदाज में याराना फिल्म में प्रस्तुत हुआ था। और माधुरी दीक्षित का वो डांस, वैसे अनु मलिक का संगीत और भी छा गया था फिल्म में और उस दौर की बात ही कुछ आ रहे। चले श्रेया घोषाल और अभिजीत की आवाज में सुन लेते हैं ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, श्रेया घोषाल और अभिजीत की आवाज का ये जादू है कि आप सुन रहे थे ये गीत। वैसे जावेद अख्तर के लिखे बोल थे और संगीत विशाल और शेखर का था। फिल्म ओम शांति ओम, जैसे कि आप जानते हैं, शाहरुख और दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण ने इसमें सबसे पहले पिक्चर इसमें साइन की और शायद इसी को रिलीज हुआ होगा। वैसे नवरात्रि का समय चल रहा है, आज पंचमी है। कोलकाता में भारी भीड़ पच चुकी है। वैसे कालीघाट मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर स्थित ये खुले आसमान के नीचे विशाल आधुनिक थीम और माँ दुर्गा की दर्शन जो सुंदर मूर्तियों के लिए लोकप्रिय है, त्रिधारा सम्मेलनी, वहां आप जा सकते हैं। और दक्षिण कोलकाता रूट भव्य थीम आधुनिक विजुअल्स आपको मैं बता रही हूं। दक्षिण कोलकाता में अपने विशाल बजट, विशाल काय पांडालों, आकर्षक लेजर लाइट्स और आधुनिक कलाकृतियों के लिए बहुत मशहूर है। वैसे सुरुचि संघ जो प्रमुख पांडाल है दक्षिण कोलकाता का, न्यू अलीपुर का ये प्रतिष्ठित क्लब अपनी भव्यता और देश विदेश की थीम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप नज़दीकी मेट्रो स्टेशन के रूट न्यू अलीपुर रेलवे स्टेशन या कालीघाट मेट्रो से ऑटो ले सकते हैं। वैसे उसके बाद एक डालिया एवरग्रीन क्लब आता है। यहाँ अक्सर भारत के किसी प्रसिद्ध मंदिर की भव्य रिप्लिका यानी कि प्रतिकृति बनाई जाती है और लाइटिंग बेजोड़ होती है। रियाहाट क्रॉसिंग गरियाहाट मोड़ के पास कालीघाट मेट्रो से नज़दीक ये पड़ता है और आप जा सकते हैं। वैसे ऐसे ही पांडालों के घूमते घूमते हमारा ये गीत भी सुनिए, सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज़ में, फिल्म कुरुक्षेत्र से।

जी हाँ दोस्तों, सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में क्या शमा बैठा था। वैसे ये फिल्म कुरुक्षेत्र का था और अब सुनते हैं उत्तर कोलकाता की रूट पारंपरिक कला और संस्कृति से, जो अपने ऐतिहासिक महत्व, संकरी गलियों के बीच में छिपे अद्भुत क्राफ्ट्स और पारंपरिक एक छाला मूर्तियों के लिए जाना जाता है। जी हाँ, उत्तर कोलकाता का कला और संस्कृति का प्रमुख पांडाल है अहिरतोला जुम्बक वृंदा, जो अपनी अनूठी कलाकृतियों और विस्तृत आंतरिक सज्जा के लिए प्रसिद्ध है। सुबह बाजार सुतानिधि मेट्रो स्टेशन से पैदल थोड़ी सी दूर है। फिर है हटी बगान सर्वोजनीन, जो हर साल बेहतरीन सामाजिक या फिर सांस्कृतिक थीम पर आधारित कलात्मक पंडाल लगाया जाता है, जो श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट की पैदल की दूरी पर बसा है। काशी बोस लेन दुर्गा पूजा कमेटी यानी कि कोलकाता के टॉप 20 पुरस्कार विजेता पंडालों में शामिल, जो अपनी बेहद रचनात्मक थीम के लिए जाना जाता है। वैसे हटी बगान और हेदुआ के पास स्थित ये है और उत्तर कोलकाता घूमने के लिए मेट्रो साउथ या फिर नॉर्थ लाइन सबसे बेहतरीन जरिया है, क्योंकि यहाँ की सड़कों पर आज शाम से ही गाड़ियों की नो एंट्री या फिर भारी ट्रैफिक लगा है। दोस्तों, इसी के साथ आपको लिए जाती हूँ श्रेया घोषाल और MG श्री कुमार की आवाज में। सुनिए ये गीत फिल्म भूल भुलैया से और साथ में मुझे इजाजत दीजिए।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: शुभ संध्या, नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के दी रियल रेडियो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर आपका पसंदीदा म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम छायालोक। और ऐसा है कि आज पांचवा दिन है नवरात्रि का, तो आप सभी को जो यही कहूंगी कि आप सभी के लिए दुर्गा माँ जो है आपकी झोली खुशियों से भर दें। और आप सब डायल कर सकते हैं 2243-7912 या फिर 2213-1341, चॉइस इज योर्स। रहूंगी आपके साथ रात के 9 बजे तक।

गाना आपको लगता है बेहद पसंद, मतलब आपके पसंद का गाना है, तो उसके लिए आप जो है फरमाइश कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है आपको डायल करना पड़ेगा 2213-1341 या फिर 2243-7912। एंड मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना इस शाम की शुरुआत की जाए फिल्म देवदास के इस गीत के साथ। श्रेया घोषाल, कविता सुब्रमण्यम और केके की आवाज़ में इस गीत को सुने। बड़े खूबसूरती से नुसरत बद्र ने इसे लिखा है और इस्माइल दरबार ने संगीतबद्ध किया है।

अगला गाना फिल्म ओम शांति ओम से शान उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और राहुल सक्सेना की आवाज में बड़ी खूबसूरती से इस गीत को कलमबद्ध किया है जावेद अख्तर ने और म्यूजिक है विशाल अंशेकर का।

0: स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 8:17 और हमारे स्टूडियो की फोन लाइन पे जुड़े हैं चंद्रमोहन गिरी दिल्ली से। तो जानना चाहूंगी कि आज की शाम रिक्वेस्ट कौन से गाने के लिए करना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार
1: जी। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: ऐसा है कि सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम छायालोग में, और आज की शाम कौन सा गाना आप सुनना पसंद करेंगे? वैसे किस तरह के फिल्में देखना आप पसंद करते हैं, पहले ये बताएं।
1: मूवीज में ऐसा कोई वो स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ जो मूवीज प्रेरणादायक होती हैं, जो है कुछ एंटरटेनमेंट हो, वो प्रेफर ज्यादा मैं करता हूँ। और एक बार सॉन्ग्स की तो सॉन्ग्स में ज्यादातर ओल्ड सॉन्ग्स हैं वो पसंद हैं, जो कि मायने रखते हैं, जो सॉन्ग्स से मोटिवेटेड हो रहे हैं,
0: थोड़े फिलोसफिकल हो, थोड़े मोटिवेशन वाले हो, है ना?
1: बिल्कुल,
0: मतलब उससे थोड़ा ऊर्जा मिले, थोड़ा ज्ञान मिले, थोड़ा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई दिशा मिले, राइट?
1: सही।
0: तो आज किस फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे?
1: गाना बहुत पसंद है, जो काफी दिल से करीब है। ये ममता पिक्चर मूवी का गाना है, रहे न रहे हम ऐसा करेंगे।
0: लता मंगेशकर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी ने इसे कलमबद्ध किया है, रोशन का संगीत है, राइट? तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप दिल्ली से जुड़े हैं, और मतलब जब श्रोता जुड़ते हैं कार्यक्रम में तो कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमोहन गिरी जी, नमस्कार।
1: थैंक यू।

दिल को छू लेने वाला ट्रैक था और ज्यादा से ज्यादा लोग कोकिल कंठी लता मंगेशकर के फैन होते हैं और शायद बहुत कम ही लोग हों जो जिन्हें ये गाना पसंद आया हो। और अब आपको बता दूं कोलकाता में तो जो है वो दोपहर से ही बारिश हो रही है और फिलहाल अभी मैं स्टूडियो में हूं तो ये नहीं बता सकती कि अभी बारिश थमी है या नहीं, लेकिन बैंगलोर में अभी भी बारिश हो रही है क्योंकि वहां से फोन किया था अरविंद गिरी ने और उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि बैंगलोर में बहुत बारिश हो रही है लेकिन मैं घर के अंदर कार्यक्रम सुन रहा हूं छायालोक और मुझे बहुत अच्छा लगता है छायालोक कार्यक्रम। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है जिस गीत के लिए बता दूं, उन्होंने कहा फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से एश किंग और साशा तिरुपति की आवाज में उन्हें ये मौसम का बारिश गाना सुनना है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बैंगलोर में बैठ के अगर कोलकाता का छाया लोग सुन सकते हैं तो इतना तो हम भी कर सकते हैं। चलिए आपको अगला गाना सुनवाती हूं मैं, ये मौसम की बारिश।

0: हेलो,
1: कौन बोल रही, कहाँ से बोल रही?
0: मैं विजय लक्ष्मी बोल रही तामलुक से। नमस्कार सबको।
1: विजय लक्ष्मी तामलुक से, चलिए बहुत बहुत आपका स्वागत है कार्यक्रम छाया लोक में। और अच्छा ये बताइए कि बंगाल में तो पूरा धूमधाम रहता है दुर्गा पूजा के दौरान, और आज पांचवा दिन है, तो आप किस तरीके से इस दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट कीजिएगा?
0: मैं तो मेरे घर के पास ही हमारे कॉलोनी में होता है, हमारा तो उसकी पूरी तैयारी में ही हमारा निकल जाता है समय, और बहुत अच्छे से हम लोग कहीं घूमने ही नहीं जाने का मन ही नहीं होता है।
1: हाँ, जब सब सोसाइटी में ही हो जाता है तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना।
0: और सुबह शाम सब पूजा के जुगाड़ काम में हम लोग इस तरह से मिल के सारी औरतें करते हैं, तो उसमें ही हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि कुछ और मतलब यार दिमाग में रहता ही।
1: लेकिन उस व्यस्तता में जो है बहुत सारी खुशियां छुपी होती है ना, जिसे आप साल भर जो है सजो कर रखते हैं। हाँ अच्छा ये बताइए कि आपको किस तरह के म्यूजिक पसंद है?
0: म्यूजिक जैसा मन हुआ, कभी उदास,
1: मतलब मूड के हिसाब से सुनती हैं, राइट? मूड के हिसाब से।
0: जब उदास हूँ हमेशा गाना, मतलब म्यूजिक वैसा ही सुनना चाहिए जो आपके मूड को कन्वर्ट कर दे।
1: हाँ,
0: मतलब ये नहीं कि आप गुस्सा, आप
1: मतलब स्ट्रेस फ्री कर दे, आपके सारे चिंताओं को उड़नछू कर दे, राइट?
0: हाँ,
1: चलिए बहुत अच्छा लगा कि आप जो है कार्यक्रम में जुड़ी। और अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कौन सा गाना आज की शाम सुनना चाहेंगी?
0: मैं आये हूँ मेरी जिंदगी में, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि हर कोई जिससे आप पूरे जीवन में मिलते हैं कहीं ना कहीं अपने, तो वो किसी न किसी उद्देश्य से मिलना होता है, और ये ऑल मतलब ऑलरेडी भगवान का ये निश्चित होता है भगवान की तरफ से कि आपको किससे कब मिलना है, तो इसीलिए जो भी जब भी आपसे मिले उनको
1: उन्हें ढेर सारा प्यार दे और जिंदगी को प्यार से भर दे, राइट?
0: बिल्कुल।
1: चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा।
0: हाँ, दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: सारे श्रोता जो है सुन रहे हैं और वो भी कह रहे होंगे कि विजय लक्ष्मी जी आपको भी अ वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा। ठीक है, थैंक यू, आप जुड़ी इसलिए।

0: स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 8:37 और 11 सेकंड और इस वक्त आप जुड़े हैं दिल से दिल तक वाले चैनल पर और कार्यक्रम सुन रहे हैं म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम छाया लोग अपनी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के संग। और ऐसा है कि आज गुरुवार की शाम आप सुन रहे हैं 8 से 9 बजे तक रिक्वेस्ट वाला प्रोग्राम। तो जानना चाहूंगी कि किसको कौन सा गाना पसंद है और कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। इसी सिलसिले में जुड़े हैं माउंट आबू राजस्थान से दिनेश भारती गोस्वामी और जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम छायालोक में।
1: थैंक यू मैम।
0: और ये बताइए दिनेश जी कि आपको किस तरह के म्यूजिक पसंद है?
1: मुझे स्पेशली शाहरुख खान और काजोल के जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। जो मतलब लव स्टोरी से रिलेटेड होते हैं वो।
0: चलिए आज की शाम कौन सा गाना स्पेसिफिकली, कोई गाना है तो बताइए, वो गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगी।
1: मुझे स्पेशली डीडीएलजी का जो एक सॉन्ग है तुझे देखा तो सनम, ये बड़ा अच्छा लगता है।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा कि आप राजस्थान माउंट आबू से जुड़े कार्यक्रम में और आपने जिस गाने के लिए रिक्वेस्ट किया है, आपको जो गाना पसंद है बिल्कुल मैं उसे प्ले करूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।
1: ओके थैंक यू मैम।

डोमजूर से समीर सौदा ने सुनना चाहा है फिल्म विश्वात्मा से साधना सरगम की आवाज में उस गीत को जिसके बोल है सात समुंदर पार। आनंद बख्शी ने बड़ी खूबसूरती से इसे कलमबद्ध किया है और विजू शाह के संगीत है।

ऐसा है दोस्तों कि उल्बेरिया से सुमित्रा ने फोन किया था और उन्होंने सुनना चाहा है फिल्म बागबान से सुदेश भोसले और आशा अलका याग्निक, माफ कीजिएगा, अलका याग्निक की आवाज में उस गीत को जिसके बोल है मेरे मकड़ा मेरी सोनिया। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि आज मेरा बर्थडे है और शायद हो सकता है कि बर्थडे सेलिब्रेशन में बिजी थी तो उन्होंने कहा कि मेरा गाना जरूर प्ले कर दीजिएगा, मुझे बेहद खुशी होगी। और आपको बता दूं कि सुमित्रा जो है बहुत हमारी पुरानी लिसनर है 107 एफएम रेनबो की, एफएम गोल्ड की, तो ऐसे में तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि उनके पसंद का गाना मैं प्ले करूं। तो सुमित्रा सबसे पहले तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और ऐसा है कि आपने जिस गाने के लिए रिक्वेस्ट किया है मैं बिल्कुल प्ले करूंगी।

स्टूडियो की घड़ी में समय उचला है 8:54 और 12 सेकंड और समय उचला है कि थोड़ी ही देर में मैं कार्यक्रम को रैप अप करूं, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारे कोई कॉलर फ्रेंड हाजिर है तो उन्हें क्या कहना है और कौन

0: सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो नमस्ते, मैं
0: हेलो
1: हेलो हेलो हेलो
0: হ্যাঁ হ্যালো, আচ্ছা বলুন কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন?
1: হ্যাঁ আমি বড়গাছিয়া গির্জাপুকুর পার্ক থেকে প্রশান্ত ঢক বলছি।
0: প্রশান্ত, আপনার বহুত বহুত স্বাগত হে কার্যক্রম ছায়ালোক মে। আর ইয়ে বতাইয়ে কি আজ কি শাম কোন সে গানা আপ সুননা চাহেঙ্গে?
1: হ্যাঁ মুঝে রাজু বন গয়া জেন্টলম্যান ফিল্ম সে ক্যা হুয়া উসে ক্যা হুয়া,
0: सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, हाय हाय हाय लवेरिया हुआ। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए कि ये गाना सुनने के पीछे क्या कारण है?
1: कुछ दिन पहले ही नाना पाटेकर साहब हमारे बीच में नहीं रहे, तो उसके वो मेरे फेवरेट एक्टर में से एक था, इसलिए वो गाना सुनना चाहता हूँ।
0: यानी कि आप नाना पाटेकर के फैन हैं? एक वर्सेटाइल एक्टर थे नो डाउट, और उन्हें आप याद कर रहे हैं। हम सब उन्हें नमन करते हुए ये गाना जरूर मैं प्ले करूंगी। और ये बताइए कि इस बार इस साल दुर्गा पूजा कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं आप?
1: अरे हमारे यहाँ बहुत तीन चार बहुत अच्छे से ठाकुर आता है, देखूंगा उसके बाद जोमजूर में जाऊंगा, ऐसा करके ही पूजा बिताऊंगा।
0: हाँ लेकिन मैं आपसे नहीं बल्कि सभी श्रोताओं से कहूंगी कि ऐसा ना कीजिएगा कि बस सप्तमी अष्टमी नौमी दसवीं सिर्फ आप स्ट्रीट फूड खाइएगा, ऐसा मत कीजिएगा। और अगर खाते भी हैं तो संभल कर खाइएगा, क्योंकि मतलब कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, तो अपने सेहत का ध्यान रखते हुए जो भी खाइएगा ध्यान में रखिएगा। और आपने जो गाने के लिए रिक्वेस्ट किया है वो गाना मैं प्ले कर रही हूँ, ठीक है? हाँ नमस्ते। तो ऐसा है दोस्तों, ये थे प्रशांत धाक बरगछिया से, और इन्होंने सुनना चाहा है राजू बन गया जेंटलमैन से अलका याग्निक, कुमार सानू, जौली मुखर्जी और साथियों की आवाज़ में उस गीत को जिसके बोल है क्या हुआ क्या हुआ, सर्दी खांसी ना मलेरिया। तो चलिए इस गाने को मैं प्ले करती हूँ, और इसी के साथ कहूँगी कि आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और अपने चारों तरफ जितना भी हो सके खुशियों के फूल खिलाते रहिए, क्योंकि यू नेवर नो जो आज आप दे रहे हैं कल वापस आपके पास आएगा। तो अच्छा दीजिएगा तो जाहिर सी बात है अच्छा ही आपको मिलेगा। और अ वेरी हैप्पी पूजा, दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। टाटा बाय बाय बोल दूं? चलिए टाटा बाय बाय भी बोल देती हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सब नमस्कार।

0: ইনভেস্টর সচেতনতামূলক উদ্যোগ। আরো জানতে হলে সেবির ইনভেস্টর ওয়েবসাইট দেখুন, নয়তো সেবি সার্থি অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
1: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आपने सुनछेन संवाद सफर 107 FM रेनबो ते। संवाद सफर, संवाद सफर।